अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ

महो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन।

सब कोय। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय, एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर

जिन सतगुर मिलिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की रीस है होर

तन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी। जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। तुद नो सब ध्यान दी।

है मुख खोले मन खोटे दये विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा।

करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

मरने जिसनु आया प्रेम रस तिसै ही जरने बाणी उचर है साध जन अम्यो चल है चरणे पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरणे।

जिह साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाए सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

रहाउ। बहुते अवगुण कु कह कोई, जांत सिपावै बख्शे सोई, गुर प्रसादी दुर्मत खोई, जय देखां तहें एको सोई।

जे बहुता समझाइए पोला, पीसो अंधो अंधा रहाओ। लख खटिय है लख संजिय है खाज है, लख आव है लख जाहे, जां पत लेख है ना पवै, तां जी किथै फिर पाहे। लख शास्त समझावणी,

पहला गुर का शब्द मने मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावाओ जो किस करे भला कर मानो सहज जोग निध पावाऊं।

गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जब जब नाम मन भया आनंदा, सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया, सत सत सत गुर नाम।

कर्ण शोभा कंठ फूल प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

छोड़ चलै अभिमानी, काहे एक बिना चित लाइए, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याइए रहाउ।

योग तिस है आराध मना बिनाश है सगल रोग राखन हार अपार राख है अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जा।

शगुन अपशगुन तिस को लगह जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

आढ आढ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोल कपाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप।

शिंगार हबरस अर्पिए, जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए, तह साध संग ना डरपिए, कर कीरत गोविंद गुणिए, सगल पराशत।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बो

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखों अपर सकहाव है सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबाव है।

आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु व्याकरणा तंत्र मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राजभोग अर्षतर सिंह।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद ना बरखे नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधव।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ।

जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया ध्यान मान मन एक मै प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त पए जोत समाए।

योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत।

उसात अभिमानी परम भूल नजर ना आवनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी कर पेख थके पेखवानी।

कहे फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइए, कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोई न मेटे प्रभु का किया, दूसर नाही अलोइए, कहो नान।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा। रसना

चलिए जो हर प्रभ का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

निर्मल मन करना, घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

धन बड़ भाग हमारा, मन मेरे साचे नाम विट हो बल जाओ, दासन दासा होए रहे ता पाव है सच्चा नाउ रहाओ।

समत कर जाने सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम जप हर हर

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर

रहाओ। जिन हर ते आया सब किश तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा तन दिया सुखदात है, निखोट न कभी जाई।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्यान दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों।

भया पिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कह।

संत जपहो हर जपना हर संत चला हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन।

धर्म कहो तुम पाई, किव छूटहि हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

सुख दर्दब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग मह पवित्र पद पवित्र पुनीत जात अकार्थ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के

कर नजर मेल मिलाया, कहन कहे सब कोए के वड्या थी है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा।

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

होई। करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्भ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, नह सत पुरख मनायो। तावत को ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना